सिंघाले सिंघाले जय हो नाना चंपार भाले गाड़ी आए हो जाने लाये हैं बता हेड तो बाबू लेवा लेवा भगा नाली भगा भगा में मानी मराना कंधा

मैं कुछ भी पहले ही दे दूं वार्निंग, पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के नाच ले बेबी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा

लगाऊंगा तेरे घर के गेट पर, ठीक 11:15 तू होना जाइयो लेट पर, टाइम वेस्ट ना करियो मेरा बेबी, मुझको काम बहुत है, एंट्री का कोई चक्कर

0: गाड़ी मैं लगाऊंगा तेरे घर के गेट पर, ठीक 11:15 तू होना जाइयो लेट पर।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

रकम तेरी सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं, वैसे तो हूँ बादशाह मैं, आज रात तुझे स्टार बना दूं, ऐसा बेबी काम करा दूं, डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं, घूर के देखे जो कोई तुझको, कान पे उसके चार लगा दूं, जी भर के नाच ले बेबी शैंपेन के शावर में, यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो

0: देखक तुझको आए पसीना शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना चकली चमेली कट कट रेना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने ये तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद
1: अहिले दिउँसोको दुई बजे
2: हजुरको रेडियो 102